तंत्री प्रकर्षम धुरस्व नयाति पञ्चा गायत्यनन्त चरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचाम रम्यम् शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावणीचम करन्दरसानुविरिध जङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

श्रीमन्नभीष्टभटाखिलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिनि

श्रीनिवास जगदे सिंधो श्रीदेवता गृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हर

स्वस्वाधिकार महिमा समर्थयन्ते श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दुभौम बुधभापतिकाव्यशौरिः स्वर्भा